सतगुरु होई दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होई दयाल न कबहूं झूरी है, सतगुरु होई दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होई दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख दे दिते हुए सारे रंगा नूं मानदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला दी पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

वैन एसयूवी लेना, टॉप टॉप टॉप का नाम एक है, वह है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला और करण शर्मा नु कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे, एरन मिल्स एक्यूरा 9058285800 9058।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498-1499-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1598- ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 416-477-2040 416-477-2040

क्या बात है, फ्राइडे जूनियर दी शाम हल्की फुल्की किणमिण किणमिण हो रही है। कणियां यार वधिया दोपहर तो पै रही ने, बट चंगी गल ये हुण कहिंदे आ कि हुण बदल वजदी रहेगी ते कणियां तो बच के चलो ठीक है, दिने दिने पै जाण शाम नूं लोगां ने कम्मां कारां तों घरे आउणा हुंदा, थोड़ा जिहा मौसम क्लीयर हो जावे। कल नूं फिर कहिंदे आ कि हल्कियां फुल्कियां कणियां पैणगियां दिने दिने, सो चलो इट्स अ गुड डे ते ग्रेट वीकेंड। एटलीस्ट वीकेंड ते बड़ी ज्यादा हीट नहीं फेस करन नूं पवेगी क्योंकि अज पै गईयां कणियां ते कल परसों फिर संडे नहीं कल या संडे ते वीकेंड नूं खूब इंजॉय करोंगे। की प्लान है फिर, किधर जा रहे हो, की कर रहे हो? तुसी कहने होंगे नवी यार प्लान ही प्लान ने, अजकल तो समर के मौसम दे विच तां बंदे नूं वेल ही नहीं, कदे इन्हें सद लिया कदे उन्हें सद लिया कदे हा कर लिया कदे हो कर लिया। सो हैव फन, इंजॉय करो। तो यह प्रोग्राम है पंजाबी नाल, थोड़े नाल जुड़ चुके हैं। स्टूडियो का नंबर है 905-603।

0: AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुत्तल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: मॉर्गेज दी बनी का गल
1: होए शम्मी पठल होरानल हो गई गल कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन बेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछानिया नाम शम्मी पठल तुहाडीआं लोड़ां मुताबक वधिया लोकेशन ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल आज ही कॉल करो 416 917 7763 416 917

0: दो खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी राइट टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक सुन रहे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरपो निरवैर रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, रस्ते देते तुम चलते जाओगे तो मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी। एक बार फिर तो पियर्सन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 जिथे अमनदीप सिंह बैनीपाल थोड़ा मकाते पाया। ग्रीनरी के नाल धुप पर हल्की हल्की ठंडक अज के दिन महसूस करोगे। गर्मी के नाल खूबसूरत वैदर फॉर खूबसूरत वीकेंड। स्टूडियो करें तो 916 और अज इस शो तो बाद कल 10 तो लैके 1 बजे तक 3 घंटे का सब तो लंबा तो वीकेंड के उत्ते सब तो वध सोल्ड होने वाला शो जी आवाज़ सुनते हो, जिस लाइव ऑन लोकेशन तकरीबन असं 10 तो 11 लाइव ऑन लोकेशन थोड़े लेके आने और बहुत सारे ऐसे मौके होंगे ने वीकेंड कि तुम कहने गड्डी हमने घुमाइए तो कुछ ना कुछ पिक कर लिए। सो चलिए अज के शो के वाल कुछ गल्ला कुछ बातें कुछ सिलसिले खबर भी जितने तुम्हें मैं साझिया करूँगा कुछ इंट्रस्टिंग मैसेजिज भी। मनजीत मेरे नाल होंगे ने हर फ्राइडे अपलायंस जंक्शन महंगाई जिथे मर्जी जाए पर अपलायंस जंक्शन उत्थे दा उत्थे ही यानी कि थोड़े लिए बेस्ट डील अगर अपलायंसिस चेंज करने हैं। मनजीत जी तुम ऑन एयर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच भाजी, प्रोग्राम सुनते सारे श्रोतों मेरे वालों प्यार प्रीत सत श्री अकाल। इस वीकेंड दी स्पेशल डील्स ने सो बॉक्सिंग वीकेंड जुलाई

0: के आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, आसान से कोर्सेज है, फुली ऑनलाइन है, तो इसमें कुछ कैच नहीं है, आप आराम से करेंगे, आराम से पास होंगे, फंडिंग हासिल करेंगे 30 से 100,000 डॉलर डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज, तो इसमें कुछ हेरा फेरी नंबर्स नहीं हिल सकते गवर्नमेंट पे, आपके कागज पहले से ही है, क्या नंबर दिलाएंगे आप, है ना। तो कॉल करें, आप अपने थोड़ी सी डिटेल सही है, मैं आपकी आपको एनओए कितना है, जितना कम उतना ज्यादा फायदा, नंबर ऑफ किड्स, आप मैरिड है फायदा, मैरिड विद किड्स है आपको और ज्यादा फायदा, फंडिंग आपके खाते में आती है, तो कॉल करें, एस्टिमेट कराएं, सिर्फ 7 या 8 दिन ही रह गए, नेक्स्ट वीक रह गए, दैट्स इट, सिंपल। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स कट कर रही है, हमारे हाथ में तो होगा नहीं ग्रांट को पैदा करना फिर से, तो इसलिए आपको राइट ऑफ एक्शन लेंगे तो आपको फायदा, नहीं तो फायदा को आपको नुकसान ही करा रहे, नहीं तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग लाह ले चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, 8 साल तो हमें हो गए इस बिजनेस में, इतने लोगों को तो हमने असिस्ट कर दिया है।
1: ठीक है, अच्छा समय कितना लगता है, जैसे आज आपको कॉल करेंगे, आप देखेंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी बनती है तो फिर आप अप्लाई करते हो, फिर कितना टाइम लग जाता
0: है? देखिए जी, अब जैसे लास्ट बैच रह गया है, 20 जुलाई को स्टार्ट है, 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद है, इसलिए हम इतना जोर लगा रहे हैं अवेयरनेस पे, तो आप अगर उस बैच में ज्वाइन करते हैं तो स्टार्ट डेट से 30 से 90 डेज में आपके खाते में फंडिंग आती है, और लाइक इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप चाहे पेंशन पे हैं 75 ईयर्स के, आप चाहे 40 ईयर्स के हैं, ऊबर ड्राइवर, हाउस वाइफ, ट्रक ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो जो अपने टैक्सेस खुद करते हैं क्योंकि उनकी इनकम कम होती है एनओए पे, उनको अच्छा बेनिफिट है, तो लाइक इसमें आपका बेनिफिट हाथी जितना है सर, हमारी फीस तो $200-500 है, आप ही देंगे तो आपका पड़ोसी दे देगा, लेकिन आप अपना नुकसान करा रहे हैं क्योंकि सब लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, पीछे रह गए, अगर अप्लाई नहीं करा पीछे ही रह गए गारंटेड।
1: अच्छा कोर्सेज कौन कौन से हैं इसमें, थोड़े उनके बारे में भी बताएं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, इजी भी हैं कि मुश्किल ही हैं सारे?
0: हम डेली सिर्फ 8 से 10 कोर्सेज में करते हैं जहां पर आराम से पास हो जाते हैं, ऑनलाइन है, इजी टू पास है, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, 2 से 3 घंटे आपने अटेंडेंस लगानी है मंडे टू फ्राइडे, फोन पे लगाएं या लैपटॉप पे लगाएं, तो वही कोर्स हमारे क्योंकि क्लाइंट ज्यादातर मिडिल एज में होते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी ज्यादा होती है उनके पास, नंबर ऑफ किड्स होते हैं उनके, हाउस वाइफ है, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, आराम से पास होते हैं, आराम से फंडिंग हासिल करते हैं, अपने खाते में उनके अपने खाते में पैसे आते हैं, और अगर बच्चे ज्यादा, अगर फैमिली ऑफ 5 है, अप टू 100,000 की फंडिंग आ रही है, 50,000 ग्रांट है, 50,000 लोन है 0% पे, अगर फैमिली ऑफ 4 है तो अप टू 80,000 की फंडिंग, 40,000 ग्रांट है, 40,000 जो रेस्ट है 0% पे, ऑप्शनल लोन है जो कि 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है, तब भी ब्याज दर क्या है 2.5% साल का, 40,000 का भी आप 44,000 ही लौटाते हैं, ग्रांट्स टैक्स फ्री है, फंडिंग आपके खाते में आती है, तो बताओ कौन पीछे रह गया सर?
1: तो आप अपना एड्रेस बताएं और फोन नंबर बताएं ताकि आपको कॉल करके जो है इस ग्रांट का फायदा लें हमारे लिसनर।
0: बिल्कुल जी, अब इसमें देखिए जी, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट जैसे डेंटल केयर, यूक्रेन को भी गवर्नमेंट 900 मिलियन और दे रही है, यू कैन गूगल एंड चेक, कल की न्यूज रही है, 30 बिलियन दे चुकी है, 60 बिलियन तो देश का बजट था डेफिसिट का, 30 बिलियन यूक्रेन को गया, 900 मिलियन गवर्नमेंट और दे रही है, कभी अनाउंसमेंट हुई है, तो गवर्नमेंट वहां पे जो कि इंडिया से भी करप्ट कंट्री है उसको गवर्नमेंट पैसा फेंके जा रही है, जब आप पे फेंक रही है तो आपको हैरानी होती है, जो गवर्नमेंट वहां पैसा देती है तो आपको हैरानी होती नहीं है, डेंटल केयर, चाइल्ड बेनिफिट जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन में आज की डेट में इन्वेस्ट कर रही है, हफ्ते तक उसका हाफ पोर्शन ग्रांट है जो वापस नहीं करना, अगर आप एक हफ्ते बाद आएंगे, अगर फैमिली ऑफ टू को 45,000 की फंडिंग बनती है, सारा का सारा लोन होगा रिटायर्ड कपल को, अगर आप 10 दिन बाद एनरोल करेंगे, आप आज एनरोल करेंगे फैमिली ऑफ टू में 45,000 आएगा, 25,000 तो ग्रांट है, रेस्ट 0% पे लोन है, तो डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज आप 30 से 100,000 की फंडिंग अपने फंड में हासिल करते हैं हमारी फीस काम होने के बाद, 199 या 499 वन टाइम फीस है, कोई कैच नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है, कोई चलाकी नहीं है सर, गारंटी देता खा करके 7 साल से 8 साल हो चुके करते हुए हजारों कॉल कर चुके हैं, नंबर नोट करें, पहले ऑफिस एड्रेस 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, अभी भी आप आ सकते हैं, 7 बंदों का स्टाफ है, टिम होटल पे नहीं मिलते, 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, आप आए ऑफिस, नंबर नोट करें आप हमारा, 437-234-3175 होने कॉल करो, टेस्टी मोड लो ते ऑफिस आओ, 437-234-3175 437-264-3175 नंबर अगेन 437-264-3175 अभी सीजन चल रहा है, लास्ट वीक भी लाइक अराउंड 29 बंदों की फंडिंग

0: मेडिकल इंश्योरेंस नंबर है जी 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर लाइफ अंडर राइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस।
1: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।
3: अपने फोन प्लान से बहुत पैसे दे रहे हो, सेलुलर पॉइंट से असि तो हाड़े लिए लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स। बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो, चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल। सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा। विजिट करो सेलुलर पॉइंट, सेव टुडे, इट्स दैट इजी। अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो। सेलुलर पॉइंट, मोर फोन्स, मोर प्लान्स, मोर चॉइस।
4: रेव सिंह, कैनेडियन जंपल, साडा अपना रियल्टर, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने। रेव सिंह, होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट रियल्टर। रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचने ते खरीदने विच तुहाडी हेल्प कर सकती है। नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 647-740-9600। 647-740-9600 कॉल की जा सकती है। तुहाडा अपना रियल्टर रेव सिंह। A to Z किचन कैबिनेट, भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं। लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073, 905-720-7073 ते कॉल कर सकते हो।
5: पंजाबी आ गए,
6: IPL चल रहा है, only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
7: यार इना इंश्योरेंस ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
8: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
9: क्रिटिकल मॉर्गेज, RESP, RRSP, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
8: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100 647-300-3100
9: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
4: कारां, SUV, ट्रक, पिकअप ट्रक, घरां दे सोफे, कारपेट, कुर्सियां, शैंपू कराउण वास्ते अनमोल सिंह जी पक्के कनेडा वालेयां नूं फोन करो 416-475-6600। $100 विच तुहाडी कार शैंपू कर दित्ती जावेगी। 416-475-6600। शैंपू तो बाद तुहाडियां कारां लिश लिश कर उठणगियां। 416-475-6600।
10: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियां। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.
11: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
12: Toronto's number one station, AM.

0: CFRC.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
2: 98 गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: ओ काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vecho. Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Ja tusi visa services di pal de vecho. Puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: आज खुश तो बात हो गई था।
8: ओ ता होना ही है, जो तो तिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे ते नकदा बनदा ही है।
7: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
8: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
9: चल क्या रहे यहां पर?
8: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
8: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
11: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 2898010566। ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
12: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: saveonenergy.ca/eap.
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
4: टुडे विच लाइव गलबात कर ले, हुणे कॉल करो 905-564-6444।
3: 905-564-6444।
4: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530 तो।
5: मैनु पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही

0: किसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात करने लिए हुणे कॉल करो 905 500 64 44
1: 905 560

0: इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे हजारा लोग आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर ही टिके रहंदे ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो, तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381 416-453-3381।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है, जिथे एडवाइजर्स लई बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज दा पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे लई पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज, डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हां, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने, चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम, या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो, अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।
2: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7। सानूं माण है कनेडियन होण दा, ते कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जिहड़े के इक्को ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने कनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लैके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटां वाला, 5 सीटां वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ। 11x11 10x10 दा सोफा तैयार करवा सकदे हो। इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क, उत्थे बहुत वड्डा शोरूम है। पहला शोरूम है 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। नंबर है परमजीत कौर होरां दा 905-792-8053 905-792-8053। सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी दा नाम। दोस्तों, रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नाल जुड़े हो। SS लॉन केयर वालों का नंबर तुहानू दईए। नवा घा लवाना, पुराने की देखभाल करवानी है, दरख्त वगैरह तो लगे हुए ने लवाने ने, होर अज भी लवा सकते हो। लैंडस्केपिंग सारा काम किया जाता। इन्हें वैबसाइट देखो www.sslawncare.ca। समर के लॉन केयर का काम किया जाता, विंटर के जी घर की स्नो हटाई जाती है, जोड़े जो प्लाजे वगैरह ने कमर्शियल उतों भी इंश्योरेंस हटा देंगे नहीं। नंबर है गुरप्रीत 437-655-1984। कितने बार छुट्टियां हटी जाना दो वीक वास्ते, घर पिछे घर पानी पुनी लगता मर जूगा पिछे, ये ला देंगे इन्हों दे दौ ड्यूटी अपने आप पिछे वैक चौट खोल के, ते कहते असी ला देंगे थोड़े बहुत पैसे, बहुत नहीं लेंगे, तो घा उस तरह रहेगा जाना पैदा कई बार छुट्टी छुट्टी। इन्हों का नंबर लो 437-655-1984
3: जी। 1-000 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
4: ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਵਿਰਕ ਦਾ ਲਾਓ ਛੱਲਾ।
3: ਅਮਰਤਾ ਵਿਰਕ ਦਾ ਛੱਲਾ
4: ਗੀਤ
2: ਗਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਰ ਮੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ
3: ਨੇ।
2: ਲਓ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, SS ਲੋਨ ਕੇਅਰ ਦਾ 437-655-1984। ਨੀਲਮ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਗੀਤ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
3: ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 905-564-6444 905-564-5444 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਮੂਵੀ

ही नोट कर लो। सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको एक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है नदी तंदूरी ग्रिल बारले पासे जिथो तुहानू बने बने हर फूड मिलता है ना जिना रॉ मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकते हो। अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्ट ड्राइव फिफ्टन फेंडर वे ब्रैम्पटन 9985 मकवीन ड्राइव ब्रैम्पटन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन 33 फार्ली ड्राइव गोवा और 600 हैस्पल रोड कैम्ब्रिज नमी खुनी ब्रांच 25 सेंट्रल बुड पार्क वे कैनेडी सेंट्रल बुड पार्क में नेड़े आओ। हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से।

0: की दस्या मैनू तो कुछ नहीं पता।
1: मुंडा बनदा है पग ठोक के मामे तेरे जा।
2: नवी दोस्तों वीकेंड है और कैली साहब ने तो वीकेंड होर वधिया बनाता। 6 दिन पहला ये टप्पे रिलीज़ किए ने गरले अख्तर होरी उन्होंने मुबारकबाद पाई दोहां नूं ते असीं भी कल प्ले करांगे एक बारी फुल सॉन्ग ना
3: जी बिल्कुल। सिंपली इंडियन दी हर लोकेशन ते अज तुहानूं साग ते मक्की दी रोटी बाय वन गैट वन फ्री मिल रही है। जरूर तुसीं पहुंचो इन्हां दीआं तिन्नों लोकेशन रात दे 2-2 बजे तक ओपन नेगीआं। सारियां लेट नाइट ओपन ने। जिहड़े भी तुहाडे घर दे नजदीक है सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स पहुंचो ते साग ते मक्की दी रोटी बाय वन गैट वन तुसीं फ्री लैके आ सकते हो।
2: दोस्तों मुलाकात दा टाइम यानी समाप्त हो रहा पर जाण नूं दिल तां नहीं कर रहा पर जाणा पैणा क्योंकि फिर भी आवांगे जावांगे ते फिर आवांगे ना। कल मनप्रीत होरी आउणगे ते मैं भी जावांगा दिल किसी का तोड़ना नहीं गया गड्डी दारू पी के चलाना नहीं है ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀਕਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

तकरीबन गायब हो गए क्योंकि सारा कुछ मशीनीकरण हो गया और पहला समा सी तुहाडे विचों कुछ सजणा ने उम्मीद है कि गर्मियां दे मौसम दे विच अपने पिंडां च दलान हुंदे सी दलान जानदे हो दलान अपने कमरिया के मूहरे एक खुला जा अपना कमरा हुंदा सी उहनूं दलान कहिंदे सी और उहदे विच छे छे सत सत अठ अठ दस दस वी वी पंद्रह